ये आखिरी दिन है जिंदगी के, दुरुस्त कर दे माल मेरा, तेरी मोहब्बत में अब जीऊं मैं, उसी में हो इंतकाल मेरा।